0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 5 से लेकर 8 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। उक्त पदों में वह राजा, शासक और हमारे सृष्टिकर्ता के संदर्भ में कहता है कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इस धरती पर अपने से ऊपर शासकों की आज्ञा के अनुसार चलने पर ही जीवन सुव्यवस्थित रहता है। यदि समाज में व्यवस्था न हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए जब तक इस धरती पर हम हैं उन अधिकारियों के अधीन रहें जो हमारे ऊपर हैं। इसी प्रकार ईश्वर द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुकूल अपना जीवन यापन करें। उपदेशक हम सबको स्मरण दिलाता है कि ईश नियमों का पालन करने पर हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। उपदेशक कहता है हर काम का उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है तब उसका दुख अनायास ही बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का और हर मामले का एक निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता। सब कुछ का फैसला अपने आप से नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर प्रार्थना और चिंतन करने के बाद ही यह विवेक मिलता है। फिर उपदेशक कहता है कि मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? फिर कहता है, किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि प्राणों पर अधिकार किसी का नहीं होता। किसी के पास वह शक्ति नहीं कि वह अपने मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए बाइबल धर्म ग्रंथ ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी ने ही सुलेमान को निराश कर दिया था। तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए कहता है, जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा।

श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 8वें पद की अग्रिम पंक्ति पर दृष्टि डालें तो इसमें लिखा है, जिस तरह युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, उसी तरह दुष्टों को अपनी दुष्टता से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे हवा को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती, वैसे ही मौत को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती। इसी प्रकार उपदेशक कहता है कि युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, वहां अवकाश या आराम का दिन नहीं होता, बस लड़ते रहना पड़ता है। उसी प्रकार जो मनुष्य बुराई में लग जाते हैं, बुराई उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अस्तु, भलाई इसी में है कि हम खुद प्रयास करें कि बुराई हमसे अलग रहे। सूक्ति ग्रंथ के 5वें अध्याय के 22वें पद में भी स्मरण दिलाया गया है। लिखा है, दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधन में बंध जाता है। और फिर संत योहन रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 34वें पद के अनुसार प्रभु येसु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा, मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया, यह भी व्यर्थ है। आगे कहता है, मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा, वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह भी प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 9वां पद एक ऐसी स्थिति पेश करता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है, क्योंकि अभी भी विश्व के कई हिस्सों में शासक और अधिक तानाशाही पर उतर रहे हैं और सरकारी दफ्तरों में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। यह स्मरण रखना होगा कि किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है, भला माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया है। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है कि भले लोग अंततः दुष्टों से बेहतर करेंगे। कहता है, फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी अमेरिका में येसु समाजी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी संघ के साथ एक मुलाकात में पोप लियो चौदहवें ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी समाज के सामने आने वाले मुद्दों का सामना करने के लिए आदर्श जगह हो सकते हैं। पोप लियो ने गुरुवार 25 जून को संघ से कहा कि सच्चाई की खोज को बढ़ावा देकर हाशिए पर पड़े लोगों एवं युवाओं के करीब रहकर और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज मानव के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण जगह बन सकते हैं। अपने भाषण में पोप ने एक रोड मैप पेश किया कि ये संस्थान अपने सदस्यों को समाज के सबसे जरूरी मुद्दों का सामना करने में कैसे मदद कर सकते हैं। पोप ने येसु समाजों की चार मुख्य प्रेरिताएं से प्रेरणा ली। ये विषय वस्तु 2019 में बनाई गई थी और इसका मकसद है अगले 10 सालों के लिए येसु समाज के काम को निर्देशित करना। इसकी प्राथमिकताएं हैं ईश्वर का रास्ता दिखाना, बहिष्कृत लोगों के साथ चलना, युवाओं के साथ यात्रा करना और हमारे साझा घर की देखभाल करना। ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले विषय के संबंध में पोप ने बताया कि जो लोग अनुसंधान करते हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो सत्य की खोज करते हैं, वे अंततः ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। उन्होंने शैक्षणिक समुदाय बनाने के महत्व पर जोर दिया जिसमें सदस्य सच्चाई को जान सकें और युवाओं के बीच ईश्वर के प्रति बढ़ती भूख का जवाब दे सकें। इस संबंध में पोप ने येसु समाजों से आध्यात्मिक अभ्यासों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया ताकि वे महत्वपूर्ण निर्णयों पर आत्मपरक करने में भी मदद कर सकते हैं। पोप लियो ने अपना संदेश इस आह्वान के साथ समाप्त किया कि येसु समाजी अपने संस्थापक संत इग्नासियस लोयला की मदद से जेसुइट परंपरा को जारी रखें। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस ने नई किताब प्रभु हमारा हाथ थामे हुए हैं का अंग्रेजी संस्करण जारी किया है जिसमें पोप बेनेडिक्ट 16वें के उन प्रवचनों को एक साथ लाया गया है जो पहले प्रकाशित नहीं हुए थे। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अपने कार्यकाल एवं अपने इस्तीफे के बाद व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग में दिए थे। यह खंड जो मूल रूप से वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा इटालियन में इल सिनोरे चितियेने पर मानो शीर्षक से प्रकाशित किया गया है 2005 एवं 2017 के बीच आगमन काल, चालीसा काल और पास्का काल के दौरान दिए गए उपदेशों को संग्रहित करता है। रिकार्डो बोलाती, लुका कारोसो और फादर फेडरिको लोम्बार्डी एसजे द्वारा संपादित इस किताब में पोप बेनेडिक्ट 16 के पूर्व निजी सचिव महाधर्मदर्श जॉर्ज गेंस्वाइन की एक प्रस्तावना और फादर फेडरिको लोम्बार्डी की एक भूमिका शामिल है। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16 द्वारा व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग के दौरान दिए गए थे जब वे पोप के रूप में कार्यरत थे और बाद में सेवानिवृत्त पोप के रूप में भी। कुछ प्रवचन प्रेरितिक आवास के चैपल में दिए गए थे जबकि कुछ वैटिकन में मातर एक्लेसिया मठ में दिए गए थे जहां पोप बेनेडिक्ट 16 पोप पद से इस्तीफा देने के बाद रहते थे। हालांकि ये प्रवचन प्राइवेट माहौल में दिए गए थे लेकिन ये पोप बेनेडिक्ट 16 के प्रवचन की गहराई और सादगी को दिखाते हैं। ये उपदेश उनकी पौत्र धर्म ग्रंथ को हमेशा नए सिरे से पढ़ने की काबिलियत को दर्शाते हैं जिससे वे विश्वास, प्रार्थना और दैनिक ख्रिस्तीय जीवन के लिए रोशनी पाते थे। किताब के पन्ने यह भी दिखाते हैं कि कैसे जोसेफ रात्सिंगर ने अपने विश्वास के केंद्र में आमोद या रूखी सोच को नहीं बल्कि ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखा। प्रवचनों में पोप बेनेडिक्ट 16 बार बार येसु के रहस्य पर लौटते हैं जो अपने लोगों के साथ रहते, उन्हें सहारा देते और उनका हाथ थामे रहते हैं। शीर्षक ही इस मुख्य समझ को बताता है। ख्रिस्त जीवन कोई अकेला रास्ता नहीं है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति और दया से चलने वाला सफर है। यह संकलन पोप बेनेडिक्ट 16 के इस शास्त्रीय काम और उनके प्रेरित कार्यों के बीच की एकता को भी दर्शाता है। उनके विचारों में स्पष्टता, आध्यात्मिक गहराई और मसीह केंद्रित फोकस की पहचान है। प्रभु हमें हाथ से थामे रहते हैं पोप बेनेडिक्ट 16 के अप्रकाशित प्रवचनों का पहला खंड है। इसके बाद सामान्य समय के प्रवचनों को समर्पित एक दूसरा खंड आने की उम्मीद है। इटालियन संस्करण 17 मई को तुरिनो अंतर्राष्ट्रीय किताब मेले में पोप बेनेडिक्ट 16 मसीह एक भविष्य हैं
अप्रकाशित प्रवचन शीर्षक द्वारा एक मीटिंग के दौरान पेश किया गया था। वक्ताओं में फादर लोम्बार्डी और इटालियन संगीतकार, संगीत लेखक जुआने निंदो फेरेती तथा संचालक में वैटिकन संचार विभाग के प्रमुख संपादक आंद्रिया तोर्नेली उपस्थित थे। अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रकाशित ये पहले अप्रकाशित किताब अब अधिक लोगों के लिए उपलब्ध है, जो पोप बेनेडिक्ट 16वें के उपदेशों और ख्रिस्त को विश्वास एवं इतिहास के केंद्र में रखने के उनके जीवन भर के निमंत्रण से एक नया अनुभव कराते हैं। सागर रविवार 2026 के लिए अपने संदेश में कार्डिनल माइकल चर्नी ने उन मुश्किल चुनौतियों पर जोर दिया है जिनका सामना आज समुद्री कर्मचारी करते हैं, क्योंकि आज समुद्र में तनाव, असुरक्षा, युद्ध और डर तेजी से बढ़ रहा है। हर साल जुलाई के दूसरे रविवार को दुनिया भर के ख्रिस्त कलीसिया सागर रविवार मनाती है। यह दिन समुद्री काम करने वालों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने का दिन होता है। 2026 में यह दिन 12 जुलाई को पड़ेगा और इसकी विषय वस्तु है आशा के बंदरगाह, नाविकों के साथ कलीसिया। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी ने सागर रविवार के लिए एक संदेश लिखा है जिसका शीर्षक है, जहाज में लदा माल और व्यापार से परे समुद्र का मानवीय चेहरा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत है।

जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 5 से लेकर 8 तक के पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। उक्त पदों में वह राजा, शासक और हमारे सृष्टिकर्ता के संदर्भ में कहता है कि जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। इस धरती पर अपने से ऊपर शासकों की आज्ञा के अनुसार चलने पर ही जीवन सुव्यवस्थित रहता है। यदि समाज में व्यवस्था न हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए जब तक इस धरती पर हम हैं उन अधिकारियों के अधीन रहें जो हमारे ऊपर हैं। इसी प्रकार ईश्वर द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुकूल अपना जीवन यापन करें। उपदेशक हम सबको स्मरण दिलाता है कि ईश नियमों का पालन करने पर हमारा कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। उपदेशक कहता है हर काम का उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है तब उसका दुख अनायास ही बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का और हर मामले का एक

निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता। सब कुछ का फैसला अपने आप से नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर प्रार्थना और चिंतन करने के बाद ही यह विवेक मिलता है। फिर उपदेशक कहता है कि मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? फिर कहता है, किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि प्राणों पर अधिकार किसी का नहीं होता। किसी के पास वह शक्ति नहीं कि वह अपने मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए बाइबल धर्म ग्रंथ ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी ने ही सुलेमान को निराश कर दिया था। तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए कहता है, जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा।

श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 8वें पद की अग्रिम पंक्ति पर दृष्टि डालें तो इसमें लिखा है, जिस तरह युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, उसी तरह दुष्टों को अपनी दुष्टता से मुक्ति नहीं मिलती। जैसे हवा को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती, वैसे ही मौत को रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती। इसी प्रकार उपदेशक कहता है कि युद्ध के समय किसी को छुट्टी नहीं मिलती, वहां अवकाश या आराम का दिन नहीं होता, बस लड़ते रहना पड़ता है। उसी प्रकार जो मनुष्य बुराई में लग जाते हैं, बुराई उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। अस्तु, भलाई इसी में है कि हम खुद प्रयास करें कि बुराई हमसे अलग रहे। सूक्ति ग्रंथ के 5वें अध्याय के 22वें पद में भी स्मरण दिलाया गया है। लिखा है, दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधन में बंध जाता है। और फिर संत योहन रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 34वें पद के अनुसार प्रभु येसु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के 9 से लेकर 13 तक के पदों का पाठ करें। ये पद इस प्रकार हैं, मैंने यह सब देखा जब मैं संसार के समस्त कार्यकलाप पर विचार करता रहा, जहां मनुष्य दूसरों पर अधिकार जताता और उन्हें हानि पहुंचाता है। मैंने दुष्टों का दफन देखा, मंदिर से जाने के बाद लोगों ने उनका आचरण भुला दिया, यह भी व्यर्थ है। आगे कहता है, मनुष्य इसलिए अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते रहते हैं कि अपराधियों को तुरंत दंड नहीं दिया जाता। दुष्ट सैकड़ों कुकर्म करने के बाद भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। फिर भी मैं जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं। किंतु दुष्ट का कल्याण नहीं होगा, वह छाया की तरह लुप्त होकर बहुत समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ के उक्त पद मनुष्य की असमर्थता पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सत्ता या ताकत का अनुचित लाभ उठाने वालों को ये पद फटकार बताते हैं। फिर यह भी प्रकाशित करते हैं कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो जाने से हम कई बार निराश हो जाते हैं। जब दुष्ट को कुछ समय के लिए सजा नहीं मिलती तो बुराई करने की उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय का 9वां पद एक ऐसी स्थिति पेश करता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी साबित हो सकती है, क्योंकि अभी भी विश्व के कई हिस्सों में शासक और अधिक तानाशाही पर उतर रहे हैं और सरकारी दफ्तरों में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। यह स्मरण रखना होगा कि किसी समुदाय के अंदर की सच्चाई हमेशा उन मार्गों का अनुसरण नहीं करती जिनकी हम उम्मीद करते हैं और जो सही और न्यायपूर्ण होते हैं। दुष्टों को बहुत बार लंबी आरामदायक जिंदगी और दौलत का आशीर्वाद मिलता है और शहर में उन्हें भलाई करने वाला माना जाता है, भला माना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत भले व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। वे उन ताकतवरों के राज में दुख उठाते हैं जो उन पर अधिकार जताते हैं। सताने वाले अपनी नफरत में और मजबूत होते जाते हैं, जबकि भले लोग दूसरों की दृष्टि में और नीचे गिर जाते हैं। अस्तु श्रोताओ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सुलेमान ने इस ना इंसाफी को व्यर्थ निरूपित किया है। तथापि इसके बावजूद वह भरोसा दिलाता है कि भले लोग अंततः दुष्टों से बेहतर करेंगे। कहता है, फिर भी मैं यह जानता हूं कि ईश्वर के भक्तों का कल्याण होगा, क्योंकि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी अमेरिका में येसु समाजी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी संघ के साथ एक मुलाकात में पोप लियो चौधरी ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी समाज के सामने आने वाले मुद्दों का सामना करने के लिए आदर्श जगह हो सकते हैं। पोप लियो ने गुरुवार 25 जून को संघ से कहा कि सच्चाई की खोज को बढ़ावा देकर हाशिए पर पड़े लोगों एवं युवाओं के करीब रहकर और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज मानव के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण जगह बन सकते हैं। अपने भाषण में पोप ने एक रोडमैप पेश किया कि ये संस्थान अपने सदस्यों को समाज के सबसे जरूरी मुद्दों का सामना करने में कैसे मदद कर सकते हैं। पोप ने येसु समाजों की चार मुख्य प्रेरिताएं से प्रेरणा ली। ये विषय वस्तु 2019 में बनाई गई थी और इसका मकसद है अगले 10 सालों के लिए येसु समाज के काम को निर्देशित करना। इसकी प्राथमिकताएं हैं ईश्वर का रास्ता दिखाना, बहिष्कृत लोगों के साथ चलना, युवाओं के साथ यात्रा करना और हमारे साझा घर की देखभाल करना। ईश्वर का रास्ता दिखाने वाले विषय के संबंध में पोप ने बताया कि जो लोग अनुसंधान करते हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो सत्य की खोज करते हैं, वे अंततः ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। उन्होंने शैक्षणिक समुदाय बनाने के महत्व पर जोर दिया जिसमें सदस्य सच्चाई को जान सकें और युवाओं के बीच ईश्वर के प्रति बढ़ती भूख का जवाब दे सकें। इस संबंध में पोप ने येसु समाजों से आध्यात्मिक अभ्यासों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया ताकि वे महत्वपूर्ण निर्णयों पर आत्मपरक करने में भी मदद कर सकते हैं। पोप लियो ने अपना संदेश इस आह्वान के साथ समाप्त किया कि येसु समाजी अपने संस्थापक संत इग्नासियस लॉयला की मदद से जेसुइट परंपरा को जारी रखें। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस ने नई किताब प्रभु हमारा हाथ थामे हुए हैं का अंग्रेजी संस्करण जारी किया है जिसमें पोप बेनेडिक्ट 16वें के उन प्रवचनों को एक साथ लाया गया है जो पहले प्रकाशित नहीं हुए थे। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अपने कार्यकाल एवं अपने इस्तीफे के बाद व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग में दिए थे। यह खंड जो मूल रूप से वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा इटालियन में इल सिनोरे चितियेने पर मानो शीर्षक से प्रकाशित किया गया है 2005 एवं 2017 के बीच आगमन काल, चालीसा काल और पास्का काल के दौरान दिए गए उपदेशों को संग्रहित करता है। रिकार्डो बोलाती, लुका कारोसो और फादर फेडरिको लोम्बार्डी एसजे द्वारा संपादित इस किताब में पोप बेनेडिक्ट 16 के पूर्व निजी सचिव महाधर्मदर्श जॉर्ज गेंसवाइन की एक प्रस्तावना और फादर फेडरिको लोम्बार्डी की एक भूमिका शामिल है। ये प्रवचन पोप बेनेडिक्ट 16 द्वारा व्यक्तिगत ख्रिस्त्याग के दौरान दिए गए थे जब वे पोप के रूप में कार्यरत थे और बाद में सेवानिवृत्त पोप के रूप में भी। कुछ प्रवचन प्रेरितिक आवास के चैपल में दिए गए थे जबकि कुछ वैटिकन में मातर एक्लेसिया मठ में दिए गए थे जहां पोप बेनेडिक्ट 16 पोप पद से इस्तीफा देने के बाद रहते थे। हालांकि ये प्रवचन प्राइवेट माहौल में दिए गए थे लेकिन ये पोप बेनेडिक्ट 16 के प्रवचन की गहराई और सादगी को दिखाते हैं। ये उपदेश उनकी पौत्र धर्म ग्रंथ को हमेशा नए सिरे से पढ़ने की काबिलियत को दर्शाते हैं जिससे वे विश्वास, प्रार्थना और दैनिक ख्रिस्त जीवन के लिए रोशनी पाते थे। किताब के पन्ने यह भी दिखाते हैं कि कैसे जोसेफ रात्सिंगर ने अपने विश्वास के केंद्र में आमोद या रूखी सोच को नहीं बल्कि ख्रिस्त के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखा। प्रवचनों में पोप बेनेडिक्ट 16 बार बार येसु के रहस्य पर लौटते हैं जो अपने लोगों के साथ रहते, उन्हें सहारा देते और उनका हाथ थामे रहते हैं। शीर्षक ही इस मुख्य समझ को बताता है। ख्रिस्त जीवन कोई अकेला रास्ता नहीं है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति और दया से चलने वाला सफर है। यह संकलन पोप बेनेडिक्ट 16 के इस शास्त्रीय काम और उनके प्रेरित कार्यों के बीच की एकता को भी दर्शाता है। उनके विचारों में स्पष्टता, आध्यात्मिक गहराई और मसीह केंद्रित फोकस की पहचान है। प्रभु हमें हाथ से थामे रहते हैं पोप बेनेडिक्ट 16 के अप्रकाशित प्रवचनों का पहला खंड है। इसके बाद सामान्य समय के प्रवचनों को समर्पित एक दूसरा खंड आने की उम्मीद है। इटालियन संस्करण 17 मई को तुरिनो अंतर्राष्ट्रीय किताब मेले में पोप बेनेडिक्ट 16 मसीह एक भविष्य हैं
अप्रकाशित प्रवचन शीर्षक द्वारा एक मीटिंग के दौरान पेश किया गया था। वक्ताओं में फादर लोम्बार्डी और इटालियन संगीतकार संगीत लेखक जुआनी निंदो फेरेती तथा संचालक में वैटिकन संचार विभाग के प्रमुख संपादक आंद्रिया तोर्नेली उपस्थित थे। अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रकाशित ये पहले अप्रकाशित किताब अब अधिक लोगों के लिए उपलब्ध है, जो पोप बेनेडिक्ट 16वें के उपदेशों और ख्रिस्त को विश्वास एवं इतिहास के केंद्र में रखने के उनके जीवन भर के निमंत्रण से एक नया अनुभव कराते हैं। सागर रविवार 2026 के लिए अपने संदेश में कार्डिनल माइकल चर्नी ने उन मुश्किल चुनौतियों पर जोर दिया है जिनका सामना आज समुद्री कर्मचारी करते हैं, क्योंकि आज समुद्र में तनाव, असुरक्षा, युद्ध और डर तेजी से बढ़ रहा है। हर साल जुलाई के दूसरे रविवार को दुनिया भर की ख्रिस्त कलीसिया सागर रविवार मनाती है। यह दिन समुद्री काम करने वालों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने का दिन होता है। 2026 में यह दिन 12 जुलाई को पड़ेगा और इसकी विषय वस्तु है आशा के बंदरगाह, नाविकों के साथ कलीसिया। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल माइकल चर्नी ने सागर रविवार के लिए एक संदेश लिखा है जिसका शीर्षक है, जहाज में लदा माल और व्यापार से परे समुद्र का मानवीय चेहरा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काथी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
3: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब, हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: और नित्य
1: कुमारी
0: मरियम
1: की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। पिता

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगाह किया है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में 5 सप्ताह पहले इबोला वायरस के प्रकोप के बारे में पहली बार जानकारी सामने आने के बाद से प्रकोप को रोकने के लिए जिस गति से प्रयास किए जा रहे हैं, यह बीमारी उससे कहीं अधिक रफ्तार से फैल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संक्रमित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक संपर्क व जागरूकता पर प्रगति दर्ज की गई है, इबोला दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक है, जिसमें संक्रमित होने वाले लगभग आधे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले मौजूदा इबोला प्रकोप के लिए जिम्मेदार बुंडी बूगियो वायरस के विरुद्ध अभी न तो कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध है और न ही प्रभावी उपचार, जिससे हालात पर लगातार गंभीर चिंता बरकरार है। फिलहाल 1094 संक्रमण मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 277 लोगों की जानी गई हैं। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि यह वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है। वहीं पड़ोसी देश युगांडा में 20 संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत होने की खबर है। गाजा पट्टी में स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान यह चिंता जताई गई कि मध्य पूर्व क्षेत्र में घटनाक्रम की वजह से वहां की मानवीय स्थिति पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपात राहत मामलों के लिए UN प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जोर देते हुए कहा कि विशाल मानवीय सहायता आवश्यकताओं के बीच आम फिलिस्तीनी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते और राहत प्रयासों के लिए जल्द से जल्द धन मुहैया कराया जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम की घोषणा के बाद से अब तक वहां 265 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ प्रवक्ता ने जिनेवा में पत्रकारों को जानकारी दी कि यह बच्चों की मौत किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई, बल्कि वे अपने घरों, स्कूलों या फुटबॉल खेलते व मछलियां पकड़ते समय हमलों के शिकार बने। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को गोली मार दी गई, बमबारी में उनकी जाने गई और फिर इजरायली बल द्वारा संचालित ड्रोन हमलों में भी मारे गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
3: संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम लागू होने के बाद भी

0: 12 लाख से अधिक लोग अपने घरों से वंचित हो चुके हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच हिंसक टकराव को समाप्त करने पर सहमति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफाइल ग्रासी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते MOU का स्वागत किया है। समझौता ज्ञापन की शर्तों में सभी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
0: संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफाइल ग्रोसी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते यानी MOU का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। महानिदेशक राफाइल मारियानो ग्रोसी ने समझौता ज्ञापन के प्रकाशित मसौदे का संदर्भ देते हुए कहा है कि अब अमेरिकी और ईरानी सहयोगियों के साथ बैठकर ये तय करना है कि आगे कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन एक सकारात्मक घटनाक्रम है, अब तकनीकी काम शुरू होगा। खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को ये भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है।
1: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा पति पत्नी के अलगाव या वैवाहिक संबंध समाप्त करने की शर्तों पर जारी किए गए आधिकारिक आदेश से न केवल बाल विवाह को लाइसेंस मिलेगा बल्कि महिलाओं और लड़कियों के लिए दुर्व्यवहार व पीड़ा भरे रिश्तों को छोड़ पाना भी कठिन हो जाएगा। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ प्रशासन तालिबान ने अप्रैल में फरमान संख्या 18 के तहत ये नियम तय किए थे कि महिलाएं व लड़कियां किन परिस्थितियों में अपने पति और विवाह से अलग होने की मांग कर सकती हैं। इनमें गुमशुदगी, एक दूसरे से मेल नहीं बैठना, हठ धार्मिकता और धार्मिक आधार समेत अन्य कारण हैं जिनकी कानूनी व्याख्या नहीं की गई है, मगर मानव अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश में महिलाओं व लड़कियों के दुर्व्यवहार या शोषण का शिकार होने का जोखिम बढ़ेगा। इससे शिया अल्पसंख्यक और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी असर पड़ने की आशंका है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
2: स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कम उम्र में विवाह अतीत की सरकारों के दौरान भी एक चुनौती रहा है, लेकिन इस नए फरमान से ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह को वैधता मिलेगी। इस फरमान से वैवाहिक संबंधों समेत संरक्षकों द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी और घरेलू दुर्व्यवहार मामलों में लड़कियों के लिए अपनी व्यथा साझा करना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर असर डालने वाले कदम उठाए गए हैं। लड़कियों की माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित कर दी गई है, महिलाओं के कामकाज पर पाबंदियां थोपी गई हैं और लाखों अफगान महिलाएं व लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई हैं।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में शुक्रवार प्रातः संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में कार्डिनल मंडल की सभा के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ख्रीस्तियाग अर्पित किया गया। इस अवसर पर अपने प्रवचन में संपूर्ण विश्व से रोम आए कार्डिनलों को संत पापा ने आमंत्रित किया कि वे अपने जीवन, अपने समुदाय, अपनी प्रेरितिक योजनाओं और अनुभवों और साथ ही समस्त खुशियों एवं दुखों को ईश्वर को अर्पित करें। संत पापा ने कहा कि हमारी भावनाएं और विचार एक साथ मिलकर प्रभु ख्रीस्त में एक प्रकाशमान केंद्र को पाते हैं, जो संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। उन्होंने कहा, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सत्य हमारे जीवन में प्रवेश करता और हमें अंदर से नया बनाता है। उन्होंने कहा, ये दिव्य वरदान उस कार्डिनल मंडल सभा के लिए जीवन देने वाला पोषण भी है, जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार खुद इसके फल देने के लिए जमीन तैयार करते, जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं, मुझमें रहो और मैं तुम में। उन्होंने कहा कि एक ओर यीशु और गुरु हमें चेतावनी देते हैं कि मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरी ओर चाहते हैं कि उनके शिष्य बहुत फल उत्पन्न करें, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह विकास को अवरुद्ध नहीं करता बल्कि उसे प्रोत्साहित करता है। संत योहन लिखते हैं, सच में हमेशा रहने वाला वचन इंसान बना ताकि सभी को जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले। उन्होंने कहा कि विश्वास से शुरू होने के बाद यह जीवन छटाई की मुश्किलों से भी मजबूत होता है, क्योंकि यह ईश पिता की ध्यान से की गई देखभाल से पोषित होता है। संत पापा ने कहा कि विश्वास वह गुण है जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो कलीसिया को जीवन देता है, क्योंकि यह वह कृपा है जो एक ही दाखलता की डालियों को पोषण देती है। उन्होंने कहा कि जीवंत कलीसिया वह कलीसिया है जो हमारे हृदयों में उंडेले गए पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा विश्वास करती और बहुत फल उत्पन्न करती है। संत पापा ने कहा कि इस तरह जैसे ईश्वर की कृपा मनुष्यों की स्वतंत्रता से पहले आती है, वैसे ही कलीसिया का विश्वास हमारी अपनी आजादी से पहले आता है, और इसके लिए एक जोशीली गवाही की जरूरत होती है। इस मिशन की शुरुआत और अंत यीशु मसीह हैं। फिर संपूर्ण विश्व के लिए एकता में शांति के वरदान की याचना करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि भले ही हम सभी लोगों को उस विश्वास के लिए आमंत्रित करते हैं जिसमें हम सचमुच में स्वतंत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और झगड़े मानव परिवार को बुरी तरह घायल करते हैं। उन्होंने कहा कि कलीसिया और विश्व में ऐसी पहलों और अनुभवों की कमी नहीं जो मानव सम्मान, न्याय, कानून की व्यवस्था और मानवीयता के लिए सम्मान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सच में ऐसे कई उदाहरण हैं जो उम्मीद का एक जरिया हैं, क्योंकि ये ईश्वर के कार्यों की खूबसूरती को दर्शाते हैं जिन्होंने हमारा सृजन दुनिया में अपनी महिमा की निशानी के तौर पर अपनी छवि और प्रतिरूप में किया है। संत पापा ने कहा कि इसीलिए युद्ध कभी भी मानवता के योग्य नहीं है जिसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिला, क्योंकि भले ही हम हाईटेक हथियारों से लैस हों, सृष्टिकर्ता ने हमें इंसानों के तौर पर झगड़ों को सुलझाने के लिए समझदारी और स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की है। संत पापा ने कहा कि मानव परिवार की एकता सिर्फ एक जैव वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह एक नैतिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा, शांति न्याय का कर्तव्य है, क्योंकि हम एक मानव परिवार हैं, मनिफिका उमानितास, एक शानदार मानवता जिसका मुखिया और उद्धारक यीशु ख्रीस्त हैं। संत पापा लियो 14वें ने वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों के लिए 1,00,000 अमरीकी डॉलरों का आरंभिक आपातकालीन अर्थदान प्रेषित किया है। भयानक भूकंप के बाद बचाव कार्य जारी हैं, जिसमें कम से कम 164 लोग मारे गए हैं और बहुत अधिक तबाही हुई है। भूकंप का समाचार पाने तथा आपदा का पूरा रूप सामने आने पर गुरुवार को संत पापा लियो 14वें ने वैटिकन के प्रेरितिक दानदाता कार्यालय के जरिए 1,00,000 यूरो का शुरुआती आपातकालीन अर्थदान भेजा है। परमधर्मपीठ का कहना है कि वेनेजुएला में परमधर्मपीठ के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष अल्बेर्टो ओर्टेगा मार्टिन और काराकास के महाधर्माध्यक्ष राउल बियोर्द कस्तिलो को भेजी गई उक्त राशि सहायता का मात्र पहला कदम है, जिसके बाद स्थानीय कलीसिया द्वारा बताई गई जरूरतों के अनुसार और मदद दी जाएगी। संत पापा लियो 14वें की फ्रीडम अंडर ग्रेस अर्थात अनुग्रह के अधीन स्वतंत्रता शीर्षक से आरंभिक रचनाएं आगामी सितंबर माह में पहली बार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाएंगी। फ्रीडम अंडर ग्रेस रिफ्लेक्शन ऑन द स्पिरिचुअल ट्रेडिशन दैट फॉर्म्ड मी शीर्षक से रचित उक्त कृति को पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के इमेज बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मूल रूप से यह पुस्तक इतालवी भाषा में वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इस पुस्तक में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट के उस समय के पत्र, प्रवचन और संबोधन शामिल हैं जिन्हें संत पापा लियो ने 2001 से 2013 तक अगस्टिन धर्म समाज के महाध्यक्ष रहते हुए लिखा था। अगस्टिन धर्म समाज द्वारा संपादित की गई यह पुस्तक उस पुरुष विशेष की सोच और आध्यात्मिकता की झलक दिखाती है जो बाद में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए। पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रकाशक कैम्बल वॉर्टन के अनुसार हर अध्याय उस व्यक्ति की आध्यात्मिक गहराई और दृष्टि का एक झरोका है जो आगे चलकर संत पापा लियो 14वें बने। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को इताली तैराकी संघ और इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ मुलाकात में शरीर और आत्मा के विकास में खेल के महत्व की सराहना की। रोम के ऐतिहासिक फोरो इतालिको स्टेडियम में 26 से 28 जून तक 62वीं सेत्ते कॉली ट्रॉफी चैंपियनशिप जारी है। अपने प्रभाषण में संत पापा लियो 14वें ने कहा कि यदि खेल को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह शरीर और आत्मा के लिए औषधि का काम कर सकता है। उन्होंने कहा यह व्यक्ति के अलग अलग पहलुओं को एकीकृत करता और खिलाड़ियों को समर्पण, प्रतिबद्धता, एकजुटता और ईमानदारी जैसे बहुत जरूरी मूल्यों की ओर ले जाता है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि तैरने का अभ्यास तब किया जाता है जब आप जल जैसे तत्व में डूबे रहते हैं जो इंसान को घेरे रहता है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से उस पहलू की याद दिलाता है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ से बनाया है। जीने का मतलब है दूसरों के साथ और अपने आस पास के माहौल के साथ तालमेल बिठा कर चलना सीखना। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगाह किया है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में 5 सप्ताह पहले इबोला वायरस के प्रकोप के बारे में पहली बार जानकारी सामने आने के बाद से प्रकोप को रोकने के लिए जिस गति से प्रयास किए जा रहे हैं, यह बीमारी उससे कहीं अधिक रफ्तार से फैल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संक्रमित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक संपर्क व जागरूकता पर प्रगति दर्ज की गई है, इबोला दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक है, जिसमें संक्रमित होने वाले लगभग आधे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले मौजूदा इबोला प्रकोप के लिए जिम्मेदार बुंडी बुगियो वायरस के विरुद्ध अभी न तो कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध है और न ही प्रभावी उपचार, जिससे हालात पर लगातार गंभीर चिंता बरकरार है। फिलहाल 1094 संक्रमण मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 277 लोगों की जानें गई हैं। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि यह वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है। वहीं पड़ोसी देश युगांडा में 20 संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत होने की खबर है। गाजा पट्टी में स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान यह चिंता जताई गई कि मध्य पूर्व क्षेत्र में घटनाक्रम की वजह से वहां की मानवीय स्थिति पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपात राहत मामलों के लिए UN प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जोर देते हुए कहा कि विशाल मानवीय सहायता आवश्यकताओं के बीच आम फिलिस्तीनी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते और राहत प्रयासों के लिए जल्द से जल्द धन मुहैया कराया जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम की घोषणा के बाद से अब तक वहां 265 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ प्रवक्ता ने जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी दी कि यह बच्चों की मौत किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई, बल्कि वे अपने घरों, स्कूलों या फुटबॉल खेलते व मछलियां पकड़ते समय हमलों के शिकार बने। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को गोली मार दी गई, बमबारी में उनकी जाने गई और फिर इजरायली बल द्वारा संचालित ड्रोन हमलों में भी मारे गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
3: संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम लागू होने के बाद भी युद्धक गतिविधियों में मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। इन हमलों में अभी तक लगभग 1000 फलिस्तीनी लोग मारे गए हैं और 3100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 265 बच्चों की मौतें भी शामिल हैं। गाजा में पिछले 8 महीनों से अधिक समय के दौरान औसतन हर दिन एक बच्चे की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों ने बार बार चेतावनी दी है कि गाजा में युद्ध ने वहां अभूतपूर्व मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है। इस समय गाजा में लगभग 19 लाख लोग विस्थापित हैं, जिनमें से अनेक को बार बार अपना घर छोड़ना पड़ा है, जबकि 12 लाख से अधिक लोग अपने घरों से वंचित हो चुके हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच हिंसक टकराव को समाप्त करने पर सहमति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते MOU का स्वागत किया है। समझौता ज्ञापन की शर्तों में सभी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
3: संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते यानी MOU का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने समझौता ज्ञापन के प्रकाशित मसौदे का संदर्भ देते हुए कहा है कि अब अमेरिकी और ईरानी सहयोगियों के साथ बैठकर ये तय करना है कि आगे कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन एक सकारात्मक घटनाक्रम है, अब तकनीकी काम शुरू होगा। खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को ये भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है।
2: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा पति पत्नी के अलगाव या वैवाहिक संबंध समाप्त करने की शर्तों पर जारी किए गए आधिकारिक आदेश से न केवल बाल विवाह को लाइसेंस मिलेगा बल्कि महिलाओं और लड़कियों के लिए दुर्व्यवहार व पीड़ा भरे रिश्तों को छोड़ पाना भी कठिन हो जाएगा। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ प्रशासन तालिबान ने अप्रैल में फरमान संख्या 18 के तहत ये नियम तय किए थे कि महिलाएं व लड़कियां किन परिस्थितियों में अपने पति और विवाह से अलग होने की मांग कर सकती हैं। इनमें गुमशुदगी, एक दूसरे से मेल नहीं बैठना, हट धार्मिकता और धार्मिक आधार समेत अन्य कारण हैं, जिनकी कानूनी व्याख्या नहीं की गई है। मगर मानव अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश में महिलाओं व लड़कियों के दुर्व्यवहार या शोषण का शिकार होने का जोखिम बढ़ेगा। इससे शिया अल्पसंख्यक और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी असर पड़ने की आशंका है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
4: स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कम उम्र में विवाह अतीत की सरकारों के दौरान भी एक चुनौती रहा है, लेकिन इस नए फरमान से ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह को वैधता मिलेगी। इस फरमान से वैवाहिक संबंधों समेत संरक्षकों द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी और घरेलू दुर्व्यवहार मामलों में लड़कियों के लिए अपनी व्यथा साझा करना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर असर डालने वाले कदम उठाए गए हैं। लड़कियों की माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित कर दी गई है, महिलाओं के कामकाज पर पाबंदियां थोपी गई हैं और लाखों अफगान महिलाएं व लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में शुक्रवार प्रातः संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में कार्डिनल मंडल की सभा के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ख्रीस्तियाग अर्पित किया गया। इस अवसर पर अपने प्रवचन में संपूर्ण विश्व से रोम आए कार्डिनलों को संत पापा ने आमंत्रित किया कि वे अपने जीवन, अपने समुदाय, अपनी प्रेरितिक योजनाओं और अनुभवों और साथ ही समस्त खुशियों एवं दुखों को ईश्वर को अर्पित करें। संत पापा ने कहा कि हमारी भावनाएं और विचार एक साथ मिलकर प्रभु ख्रीस्त में एक प्रकाशमान केंद्र को पाते हैं, जो संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। उन्होंने कहा, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सत्य हमारे जीवन में प्रवेश करता और हमें अंदर से नया बनाता है। उन्होंने कहा, ये दिव्य वरदान उस कार्डिनल मंडल सभा के लिए जीवन देने वाला पोषण भी है जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार खुद इसके फल देने के लिए जमीन तैयार करते, जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं, मुझमें रहो और मैं तुम में। उन्होंने कहा कि एक ओर यीशु और गुरु हमें चेतावनी देते हैं कि मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरी ओर चाहते हैं कि उनके शिष्य बहुत फल उत्पन्न करें, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह विकास को अवरुद्ध नहीं करता बल्कि उसे प्रोत्साहित करता है। संत योहन लिखते हैं, सच में हमेशा रहने वाला वचन इंसान बना ताकि सभी को जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले। उन्होंने कहा कि विश्वास से शुरू होने के बाद यह जीवन छटाई की मुश्किलों से भी मजबूत होता है, क्योंकि यह ईश पिता की ध्यान से की गई देखभाल से पोषित होता है। संत पापा ने कहा कि विश्वास वह गुण है जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो कलीसिया को जीवन देता है, क्योंकि यह वह कृपा है जो एक ही दाखलता की डालियों को पोषण देती है। उन्होंने कहा कि जीवंत कलीसिया वह कलीसिया है जो हमारे हृदयों में उड़ेले गए पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा विश्वास करती और बहुत फल उत्पन्न करती है। संत पापा ने कहा कि इस तरह जैसे ईश्वर की कृपा मनुष्यों की स्वतंत्रता से पहले आती है, वैसे ही कलीसिया का विश्वास हमारी अपनी आजादी से पहले आता है, और इसके लिए एक जोशीली गवाही की जरूरत होती है। इस मिशन की शुरुआत और अंत यीशु मसीह हैं। फिर संपूर्ण विश्व के लिए एकता में शांति के वरदान की याचना करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि भले ही हम सभी लोगों को उस विश्वास के लिए आमंत्रित करते हैं जिसमें हम सचमुच में स्वतंत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और झगड़े मानव परिवार को बुरी तरह घायल करते हैं। उन्होंने कहा कि कलीसिया और विश्व में ऐसी पहलों और अनुभवों की कमी नहीं जो मानव सम्मान, न्याय, कानून की व्यवस्था और मानवीयता के लिए सम्मान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सच में ऐसे कई उदाहरण हैं जो उम्मीद का एक जरिया हैं, क्योंकि ये ईश्वर के कार्यों की खूबसूरती को दर्शाते हैं जिन्होंने हमारा सृजन दुनिया में अपनी महिमा की निशानी के तौर पर अपनी छवि और प्रतिरूप में किया है। संत पापा ने कहा कि इसीलिए युद्ध कभी भी मानवता के योग्य नहीं है जिसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिला, क्योंकि भले ही हम हाईटेक हथियारों से लैस हों, सृष्टिकर्ता ने हमें इंसानों के तौर पर झगड़ों को सुलझाने के लिए समझदारी और स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की है। संत पापा ने कहा कि मानव परिवार की एकता सिर्फ एक जैव वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह एक नैतिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा, शांति न्याय का कर्तव्य है क्योंकि हम एक मानव परिवार हैं, मैग्निफिका उमानितास, एक शानदार मानवता जिसका मुखिया और उद्धारक यीशु ख्रीस्त हैं। संत पापा लियो 14वें ने वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों के लिए 1,00,000 अमरीकी डॉलरों का आरंभिक आपातकालीन अर्थदान प्रेषित किया है। भयानक भूकंप के बाद बचाव कार्य जारी हैं जिसमें कम से कम 164 लोग मारे गए हैं और बहुत अधिक तबाही हुई है। भूकंप का समाचार पाने तथा आपदा का पूरा रूप सामने आने पर गुरुवार को संत पापा लियो 14वें ने वैटिकन के प्रेरितिक दानदाता कार्यालय के जरिए 1,00,000 यूरो का शुरुआती आपातकालीन अर्थदान भेजा है। परमधर्मपीठ का कहना है कि वेनेजुएला में परमधर्मपीठ के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष अल्बेर्टो ओर्टेगा मार्टिन और काराकास के महाधर्माध्यक्ष राउल बियोर्द कस्तिलो को भेजी गई उक्त राशि सहायता का मात्र पहला कदम है, जिसके बाद स्थानीय कलीसिया द्वारा बताई गई जरूरतों के अनुसार और मदद दी जाएगी। संत पापा लियो 14वें की फ्रीडम अंडर ग्रेस अर्थात अनुग्रह के अधीन स्वतंत्रता शीर्षक से आरंभिक रचनाएं आगामी सितंबर माह में पहली बार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाएंगी। फ्रीडम अंडर ग्रेस रिफ्लेक्शन ऑन द स्पिरिचुअल ट्रेडिशन दैट फॉर्म्ड मी शीर्षक से रचित उक्त कृति को पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के इमेज बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मूल रूप से यह पुस्तक इतालवी भाषा में वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इस पुस्तक में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट के उस समय के पत्र, प्रवचन और संबोधन शामिल हैं, जिन्हें संत पापा लियो ने 2001 से 2013 तक अगस्टिन धर्म समाज के महाध्यक्ष रहते हुए लिखा था। अगस्टिन धर्म समाज द्वारा संपादित की गई यह पुस्तक उस पुरुष विशेष की सोच और आध्यात्मिकता की झलक दिखाती है जो बाद में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए। पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रकाशक कैम्बल वॉर्टन के अनुसार हर अध्याय उस व्यक्ति की आध्यात्मिक गहराई और दृष्टि का एक झरोका है जो आगे चलकर संत पापा लियो 14वें बने। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को इताली तैराकी संघ और इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ मुलाकात में शरीर और आत्मा के विकास में खेल के महत्व की सराहना की। रोम के ऐतिहासिक फोरो इतालिको स्टेडियम में 26 से 28 जून तक 62वीं सेट्टे कॉली ट्रॉफी चैंपियनशिप जारी है। अपने प्रभाषण में संत पापा लियो 14वें ने कहा कि यदि खेल को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह शरीर और आत्मा के लिए औषधि का काम कर सकता है। उन्होंने कहा यह व्यक्ति के अलग अलग पहलुओं को एकीकृत करता और खिलाड़ियों को समर्पण, प्रतिबद्धता, एकजुटता और ईमानदारी जैसे बहुत जरूरी मूल्यों की ओर ले जाता है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि तैरने का अभ्यास तब किया जाता है जब आप जल जैसे तत्व में डूबे रहते हैं जो इंसान को घेरे रहता है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से उस पहलू की याद दिलाता है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ से बनाया है। जीने का मतलब है दूसरों के साथ और अपने आस पास के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर चलना सीखना। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।